0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जाओ, आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्ज्वल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो जीवन दिया है, उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे, उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में, जहां तुम जाने वाले हो, वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। नवा अध्याय हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन करने के लिए बाध्य करता है। उक्त पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। उक्त पद ईश्वर की महान शक्ति को रेखांकित करते हैं। श्रोताओ, संभवतः इन शब्दों से उपदेशक ने यह कहना चाहा कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर ने उसे स्वीकृति नहीं दी होती तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। श्रोताओ, सुलेमान खुद इस जीवन का सुख भोग चुका था, इसलिए अपने सुनने वालों को भी यही परामर्श देता है कि जो जीवन मिला है उसी में वे सुखी रहें, उसी में आनंद मनाएं। कहता है कि अपने व्यर्थ जीवन को सुखी बनाओ, बेहतर बनाने का प्रयास करो और उसे कोई अर्थ प्रदान करो। श्रोताओं, वैवाहिक जीवन की मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो और सम्मान हो, तभी उनका वैवाहिक जीवन सुखी रह सकता है। याद रखें कि जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें, उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में, जहां तुम जाने वाले हो, वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं। मनुष्य की सृष्टि इसीलिए हुई कि वह काम करता रहे, कर्मण्य रहे, सक्रिय रहे। उसे सब प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया ताकि उसे ईश्वर से मिली बुद्धि, ईश्वर से मिली इच्छा और स्मरण शक्ति से वह अपने जीवन में अपने दायित्वों का भली प्रकार अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करें।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के 11वें और 12वें पदों पर गौर करें। इन पदों में उपदेशक मनुष्य पर आने वाली अप्रत्याशित विपत्तियों के बारे में आगाह करता है। ये पद इस प्रकार हैं। मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी, न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, न तो सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। सबसे पहले तो श्रोताओं, उपदेशक इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि दौड़ केवल तेज दौड़ने वालों के लिए नहीं होती है और न ही लड़ाई केवल ताकतवर लोगों के लिए। वस्तुतः उपदेशक सुलेमान ने सोचा कि यदि जिंदगी में यही सब कुछ है तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ है क्या? एक ऐसा संसार जहां केवल तेज दौड़ने वाले ही जीतें और सबसे बलवान ही युद्ध में विजयी होवें, तो जीवन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। हर कोई जीतने का प्रयास कर सकता है। कहता है क्योंकि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। उपदेशक फिर से किस्मत या नियति की भावना से जुड़ जाता है और उससे जूझता रहता है। कहता है कि न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता है और न ही सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है। केवल बुद्धिमान या ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम सब के सब समय और संयोग के अधीन हैं। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि जिस तरह मछलियां जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य विपत्ति के शिकार बन जाते हैं जो कि अचानक उन पर आ पड़ती है। अस्तु सावधान करता है कि हम हर समय आने वाले कल के लिए, आने वाले क्षण के लिए तैयार रहें। ईश नियमों का पालन करें, अपने दायित्वों का निर्वाह करें और सच्चाई से अपना जीवन यापन करें। आगे नवे अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक प्रज्ञा की उपेक्षा न करने का हम सबसे आग्रह करता है। कहता है, मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर

किया कि मोर्चा बंदी से बचाने वाले एकमात्र व्यक्ति का हमेशा रहने वाला मतलब हो सकता था, किंतु वह भी उससे छीन लिया गया। श्रोताओं, इंसान जल्दी भूल जाते हैं, किंतु ईश्वर भले कर्मों को कभी नहीं भूलते। वे मनुष्य को उसका पुरस्कार अवश्य देते हैं। तिमोथी को प्रेषित दूसरे पत्र के दूसरे अध्याय के 19वें पद में संत पॉल लिखते हैं, ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित हैं, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं, अस्तु जो प्रभु का नाम लेता वह अधर्म से दूर रहे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में आयोजित प्रार्थना सभा शांति का गीत में शामिल हुए। प्रार्थना सभा में आंद्रिया बोचेली और ABF गायक दल उपस्थित थे, जिसमें युगांडा, पौत्रभूमि एवं इटली के बच्चों की आवाजें शामिल थी। जिस तरह जलधारा के पीछे पीछे चलकर अंततः उसके स्रोत तक पहुंचा जा सकता है, वैसे ही संगीत की खूबसूरती हमें ईश्वर की ओर ले जा सकती है, अर्थ और खुशी की उस प्यास को बुझा सकती है जिससे दुनिया नहीं बुझा सकती। यही छवि पोप लियो चौदहवें ने 29 जुलाई की शाम कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे उद्यान बोर्गो लाउदातो सी में मेतुसेला नामक पुराने सदाबहार बालूत पेड़ की छाया में हुए शांति के गीत के दौरान अपने चिंतन में पेश की। धर्म ग्रंथ में बताए गए दूतों और संतों की मंडली को याद करते हुए पोप ने कहा कि वे हर समय गाते नहीं रहते, बल्कि उनके स्वर का पूर्ण तालमेल ईश्वर के बारे में उनके साझा प्रतिबिंब से निकलता है। एक ऐसा तालमेल जिससे पाने में दुनिया का संगीत हमारी मदद कर सकता है। लाउदातो सी उस शिक्षा केंद्र ने आंद्रिया बोचेली फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इससे आयोजित किया था, जिससे मशहूर टेनर खुद प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ के उत्सव का हिस्सा है। इसमें संत फ्रांसिस की लिखी हुई बातें जैसे सृष्टि का भजन, बाइबल पाठ और कई संत पापाओं के शब्द शामिल थे। संत पापा ने इस कार्यक्रम को खुशी का अवसर बताया, जिसमें आंद्रिया बोचेली और ABF वॉइस कॉयर भी शामिल थे, जिसमें पौत्रभूमि, युगांडा और इटली के 164 बच्चे एवं युवा शामिल रहे। संगीत के प्रति प्यार के कारण एक साथ जमा हुए युवाओं और बच्चों में से कई युद्ध, गरीबी एवं पीड़ा भरा जीवन जी रहे हैं। पोप ने कहा कि उनके सुंदर गायन और सभा के अंत में की गई कई भाषाओं में प्रार्थना ने दिखाया कि कैसे संगीत अलग अलग सुरों को एक साथ ला सकता है और जहां हर व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना खास योगदान दे सकता है। इस तरह गाने बजाने वालों का दल तालमेल और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। पौत्र बाइबल में बताए गए स्वर्गीय गायक मंडली की कल्पना करते हुए पोप ने कहा कि उनकी एकता ईश्वर में पूर्ण आनंद पाने से आती है। उन्होंने आगे कहा, जब आप गा रहे थे तो क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे संगीत ने हम सभी को एक नए अनुभव की ओर खींचा, एक ऐसा अनुभव जिसे हम में से कोई भी अकेले नहीं बना सकता। यही सुंदरता का अनुभव है जो एक नया क्षितिज खोलता और हमारे अंदर उस ओर बढ़ने की इच्छा जगाता है। उस क्षितिज की ओर बढ़ने का मतलब सिर्फ कुछ चीज नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को

खोजना है। पोप ने आगे कहा, जैसे हम एक धारा के साथ उसके स्रोत तक वापस जा सकते हैं, वैसे ही संगीत की सुंदरता हमें उनसे मिलने के लिए बुलाती है जो खुद सुंदर हैं। ईश्वर ने आपको जो वरदान दिए हैं उन्हें बढ़ाते रहें और उन्हें आपको ईश्वर तक ले जाने दें। पोप ने युवाओं के बेचैन दिलों को स्वीकार किया और कहा कि सिर्फ ईश्वर ही उन्हें सच्चा आराम दे सकते हैं। याद रखें कि आप बड़े चीज़ों के लिए बने हैं और पूरी दुनिया आपके मकसद और आनंद की प्यास को बुझाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके बाद पोप ने वहाँ मौजूद युवाओं को व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया कि संत पापा उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए, उनके परिवारों और उनके देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शब्द शांति की प्रार्थना बन गए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दुनिया के उन सभी हिस्सों में राज करे जो हिंसा के कारण लगातार परेशान है। युवा प्रतिभागियों के लिए पोप के साथ मिलकर प्रार्थना करना 10 दिन की यात्रा का अंत था, जिसके दौरान गायकों और शिक्षकों ने गाने की कला के द्वारा प्रशिक्षण, दोस्ती और भाईचारे का अनुभव किया। पोप ने पढ़ाई और समाज में पिछड़े युवाओं की मदद करने के लिए अंद्रेया बोचेली फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया। पोप लियो चौदवें ने अमेरिकी प्रशासक NBC को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका के इतिहास में प्रवासन की अहमियत पर जोर दिया और संकेत दिया कि वे अगले कुछ सालों में अपने जन्मभूमि का दौरा कर सकते हैं। कस्तेल गंदोल्फो में अपनी छुट्टियों के तुरंत बाद पोप लियो चौदवें ने बुधवार शाम को अमेरिकी प्रसारक NBC के साथ एक छोटा साक्षात्कार दिया। यह साक्षात्कार अंद्रेया बोचेली और दुनिया भर के बच्चों के संगीत के साथ शांति के लिए एक प्रार्थना कार्यक्रम के बाद हुआ। साक्षात्कार में संत पापा ने अमेरिका के उन प्रयासों के बारे में बात की जो उन्हें पसंद हैं, खासकर देश के प्रवासन का स्वागत करने के इतिहास के बारे। जब उन्हें पूछा गया कि वे पहले अमेरिकी पोप होने के बारे में क्या सोचते हैं, तो पोप लियो ने स्पष्ट किया कि वे खुद को अक्सर एक ऐसे पोप के रूप में देखते हैं जो अमेरिकन हैं, और यह भी कहा कि उनका मकसद अमेरिकी होने के अर्थ को कम आंकना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, मेरा परिवार अभी भी अमेरिका में है, मुझे अमेरिका से बहुत प्यार है, लेकिन मैं अपनी प्रेरिताई को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में समझता हूँ, जो कि एक विश्वव्यापी कलीसिया की प्रेरिताई है और दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने के लिए एक आवाज एवं अवसर बनना है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अमेरिका के बारे में क्या पसंद है, तो पोप ने अमेरिका की स्वतंत्रता, अवसर, पीढ़ियों से दुनिया भर के लोगों को अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए बुलाने की भावना के सिद्धांत के बारे बात की। उन्होंने बताया कि उनके अपने दादा दादी अमेरिका में प्रवासी थे। उन्होंने कहा कि उनकी माँ के परिवार में ऐसे लोग थे जो गुलाम भी थे और गुलामों के मालिक भी। उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो बड़े होने का एक इतिहास है और इस तरह का अनुभव जिसने मुझे खुद को अमेरिका की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक पहचानने में मदद की, और मैं उन सिद्धांतों पर कायम हूँ जो इतने सालों से अमेरिकी होने के हिस्से रहे हैं और वे आगे भी जारी रहेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए CBCI कार्यालय ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के केंद्र में अपनी पहली राष्ट्रीय समिति का उद्घाटन किया, जो भारत में कार्तिक कलीसिया के शिक्षण प्रेरिताय को मजबूत करने में एक अहम मील का पत्थर होगा। उद्घाटन समारोह ने देश भर में कार्तिक शिक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करने और एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए धर्माध्यक्षों, 3 स्वतंत्र कलीसियाओं के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय कार्तिक शैक्षणिक संगठनों के नेताओं और नवगठित राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को एक साथ लाया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जाओ आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। नवा अध्याय हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन करने के लिए बाध्य करता है। उक्त पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। उक्त पद ईश्वर की महान शक्ति को रेखांकित करते हैं। श्रोताओं, संभवतः इन शब्दों से उपदेशक ने यह कहना चाहा कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर ने उसे स्वीकृति नहीं दी होती तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। श्रोताओं, सुलेमान खुद इस जीवन का सुख भोग चुका था, इसलिए अपने सुनने वालों को भी यही परामर्श देता है कि जो जीवन मिला है उसी में वे सुखी रहें, उसी में आनंद मनाएं। कहता है कि अपने व्यर्थ जीवन को सुखी बनाओ, बेहतर बनाने का प्रयास करो और उसे कोई अर्थ प्रदान करो। श्रोताओं, वैवाहिक जीवन की मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो और सम्मान हो, तभी उनका वैवाहिक जीवन सुखी रह सकता है। याद रखें कि जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं। मनुष्य की सृष्टि इसीलिए हुई कि वह काम करता रहे, कर्मण्य रहे, सक्रिय रहे। उसे सब प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया ताकि उसे ईश्वर से मिली बुद्धि, ईश्वर से मिली इच्छा और स्मरण शक्ति से वह अपने जीवन में अपने दायित्वों का भली प्रकार अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करे।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 11वें और 12वें पदों पर गौर करें। इन पदों में उपदेशक मनुष्य पर आने वाली अप्रत्याशित विपत्तियों के बारे में आगाह करता है। ये पद इस प्रकार हैं। मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी, न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है, न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, न तो सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। सबसे पहले तो श्रोताओं, उपदेशक इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि दौड़ केवल तेज दौड़ने वालों के लिए नहीं होती है और न ही लड़ाई केवल ताकतवर लोगों के लिए। वस्तुतः उपदेशक सुलेमान ने सोचा कि यदि जिंदगी में यही सब कुछ है तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ है क्या? एक ऐसा संसार जहां केवल तेज दौड़ने वाले ही जीतें और सबसे बलवान ही युद्ध में विजयी होवें, तो जीवन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। हर कोई जीतने का प्रयास कर सकता है। कहता है क्योंकि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। उपदेशक फिर से किस्मत या नियति की भावना से जुड़ जाता है और उससे जूझता रहता है। कहता है कि न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता है और न ही सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है। केवल बुद्धिमान या ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम सब के सब समय और संयोग के अधीन हैं। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि जिस तरह मछलियां जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य विपत्ति के शिकार बन जाते हैं जो कि अचानक उन पर आ पड़ती है। अस्तु सावधान करता है कि हम हर समय आने वाले कल के लिए, आने वाले क्षण के लिए तैयार रहें। ईश नियमों का पालन करें, अपने दायित्वों का निर्वाह करें और सच्चाई से अपना जीवन यापन करें। आगे 9वें अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक प्रज्ञा की उपेक्षा न करने का हम सबसे आग्रह करता है। कहता है, मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती अच्छे से अच्छा काम बिगाड़ सकती है। श्रोताओं, यहां उपदेशक सुलेमान एक दरिद्र किंतु समझदार व्यक्ति की कहानी सुनाता है, जिसकी समझदारी ने एक शहर को एक बड़े राजा की घेराबंदी से बचाया। इसके बावजूद उस बेचारे को मृत्यु के बाद किसी ने भी याद नहीं किया, क्योंकि मौत सभी के लिए वजूद और होश खत्म कर देती है। सुलेमान ने विरोध किया कि मोर्चाबंदी से बचाने वाले एकमात्र व्यक्ति का हमेशा रहने वाला मतलब हो सकता था, किंतु वह भी उससे छीन लिया गया। श्रोताओं, इंसान जल्दी भूल जाते हैं, किंतु ईश्वर भले कर्मों को कभी नहीं भूलते। वे मनुष्य को उसका पुरस्कार अवश्य देते हैं। तिमोथी को प्रेषित दूसरे पत्र के 2वें अध्याय के 19वें पद में संत पॉल लिखते हैं,
ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित हैं। प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं। अस्तु, जो प्रभु का नाम लेता वह अधर्म से दूर रहे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में आयोजित प्रार्थना सभा शांति का गीत में शामिल हुए। प्रार्थना सभा में अंद्रिया बोचेली और एबीएफ गायक दल उपस्थित थे, जिसमें युगांडा, पौत्रभूमि एवं इटली के बच्चों की आवाजें शामिल थी। जिस तरह जलधारा के पीछे पीछे चलकर अंततः उसके स्रोत तक पहुंचा जा सकता है, वैसे ही संगीत की खूबसूरती हमें ईश्वर की ओर ले जा सकती है, अर्थ और खुशी की उस प्यास को बुझा सकती है जिससे दुनिया नहीं बुझा सकती। यही छवि पोप लियो चौदहवें ने 29 जुलाई की शाम कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे उद्यान बोर्गो लाउदातो सी में मेथुसेलाह नामक पुराने सदाबहार बालूत पेड़ की छाया में हुए शांति के गीत के दौरान अपने चिंतन में पेश की। धर्म ग्रंथ में बताए गए दूतों और संतों की मंडली को याद करते हुए पोप ने कहा कि वे हर समय गाते नहीं रहते, बल्कि उनके स्वर का पूर्ण तालमेल ईश्वर के बारे में उनके साझा प्रतिबिंब से निकलता है। एक ऐसा तालमेल जिससे पाने में दुनिया का संगीत हमारी मदद कर सकता है। लाउदातो सी उस शिक्षा केंद्र ने अंद्रिया बोचेली फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इससे आयोजित किया था, जिससे मशहूर टेनर खुद प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ के उत्सव का हिस्सा है। इसमें संत फ्रांसिस की लिखी हुई बातें जैसे सृष्टि का भजन, बाइबल पाठ और कई संत पापाओं के शब्द शामिल थे। संत पापा ने इस कार्यक्रम को खुशी का अवसर बताया, जिसमें अंद्रिया बोचेली और एबीएफ वॉइस कॉयर भी शामिल थे, जिसमें पौत्रभूमि, युगांडा और इटली के 164 बच्चे एवं युवा शामिल रहे। संगीत के प्रति प्यार के कारण एक साथ जमा हुए युवाओं और बच्चों में से कई युद्ध, गरीबी एवं पीड़ा भरा जीवन जी रहे हैं। पोप ने कहा कि उनके सुंदर गायन और सभा के अंत में की गई कई भाषाओं में प्रार्थना ने दिखाया कि कैसे संगीत अलग अलग सुरों को एक साथ ला सकता है और जहां हर व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना खास योगदान दे सकता है। इस तरह गाने बजाने वालों का दल तालमेल और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। पौत्र बाइबल में बताए गए स्वर्गीय गायक मंडली की कल्पना करते हुए पोप ने कहा कि उनकी एकता ईश्वर में पूर्ण आनंद पाने से आती है। उन्होंने आगे कहा, जब आप गा रहे थे तो क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे संगीत ने हम सभी को एक नए अनुभव की ओर खींचा, एक ऐसा अनुभव जिसे हम में से कोई भी अकेले नहीं बना सकता। यही सुंदरता का अनुभव है जो एक नया क्षितिज खोलता और हमारे अंदर उस ओर बढ़ने की इच्छा जगाता है। उस क्षितिज की ओर बढ़ने का मतलब सिर्फ कुछ चीज नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को खोजना है। पोप ने आगे कहा, जैसे हम एक धारा के साथ उसके स्रोत तक वापस जा सकते हैं, वैसे ही संगीत की सुंदरता हमें उनसे मिलने के लिए बुलाती है जो खुद सुंदर हैं। ईश्वर ने आपको जो वरदान दिए हैं उन्हें बढ़ाते रहें और उन्हें आपको ईश्वर तक ले जाने दें। पोप ने युवाओं के बेचैन दिलों को स्वीकार किया और कहा कि सिर्फ ईश्वर ही उन्हें सच्चा आराम दे सकते हैं। याद रखें कि आप बड़े चीजों के लिए बने हैं और पूरी दुनिया आपके मकसद और आनंद की प्यास को बुझाने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद पोप ने वहां मौजूद युवाओं को व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया कि संत पापा उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए, उनके परिवारों और उनके देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शब्द शांति की प्रार्थना बन गए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दुनिया के उन सभी हिस्सों में राज करे जो हिंसा के कारण लगातार परेशान है। युवा प्रतिभागियों के लिए पोप के साथ मिलकर प्रार्थना करना 10 दिन की यात्रा का अंत था, जिसके दौरान गायकों और शिक्षकों ने गाने की कला के द्वारा प्रशिक्षण, दोस्ती और भाईचारे का अनुभव किया। पोप ने पढ़ाई और समाज में पिछड़े युवाओं की मदद करने के लिए अंद्रिया बोचेली फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया। पोप लियो चौदहवें ने अमेरिकी प्रशासक एनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका के इतिहास में प्रवासन की अहमियत पर जोर दिया और संकेत दिया कि वे अगले कुछ सालों में अपने जन्मभूमि का दौरा कर सकते हैं। कस्तेल गंदोल्फो में अपनी छुट्टियों के तुरंत बाद पोप लियो चौदहवें ने बुधवार शाम को अमेरिकी प्रसारक एनबीसी के साथ एक छोटा साक्षात्कार दिया। यह साक्षात्कार अंद्रिया बोचेली और दुनिया भर के बच्चों के संगीत के साथ शांति के लिए एक प्रार्थना कार्यक्रम के बाद हुआ। साक्षात्कार में संत पापा ने अमेरिका के उन प्रयासों के बारे में बात की जो उन्हें पसंद हैं
खासकर देश के प्रवासन का स्वागत करने के इतिहास के बारे। जब उन्हें पूछा गया कि वे पहले अमेरिकी पोप होने के बारे में क्या सोचते हैं, तो पोप लियो ने स्पष्ट किया कि वे खुद को अक्सर एक ऐसे पोप के रूप में देखते हैं जो अमेरिकन हैं, और यह भी कहा कि उनका मकसद अमेरिकी होने के अर्थ को कम आंकना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, मेरा परिवार अभी भी अमेरिका में है, मुझे अमेरिका से बहुत प्यार है, लेकिन मैं अपनी प्रेरिताई को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में समझता हूँ, जो कि एक विश्वव्यापी कलीसिया की प्रेरिताई है और दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने के लिए एक आवाज एवं अवसर बनना है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अमेरिका के बारे में क्या पसंद है, तो पोप ने अमेरिका की स्वतंत्रता, अवसर, पीढ़ियों से दुनिया भर के लोगों को अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए बुलाने की भावना के सिद्धांत के बारे बात की। उन्होंने बताया कि उनके अपने दादा दादी अमेरिका में प्रवासी थे। उन्होंने कहा कि उनकी माँ के परिवार में ऐसे लोग थे जो गुलाम भी थे और गुलामों के मालिक भी। उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो बड़े होने का एक इतिहास है और इस तरह का अनुभव जिसने मुझे खुद को अमेरिका की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक पहचानने में मदद की, और मैं उन सिद्धांतों पर कायम हूँ जो इतने सालों से अमेरिकी होने के हिस्से रहे हैं और वे आगे भी जारी रहेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए CBCI कार्यालय ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के केंद्र में अपनी पहली राष्ट्रीय समिति का उद्घाटन किया, जो भारत में कार्तिक कलीसिया के शिक्षण प्रेरिताय को मजबूत करने में एक अहम मील का पत्थर होगा। उद्घाटन समारोह ने देश भर में कार्तिक शिक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करने और एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए धर्माध्यक्षों, 3 स्वतंत्र कलीसियाओं के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय कार्तिक शैक्षणिक संगठनों के नेताओं और नवगठित राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को एक साथ लाया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: सचिविदोम अवृत कन्याए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पवित्र कार्तिक कलिस्य धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,

0: अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु येसु की प्राण पीड़ा।
2: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
3: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
2: हे मेरे येसु,
3: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: दुख के दूसरा भेद, येसु कोड़ों से मारे जाते हैं।
2: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर।

प्रेम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। यह घोषणा कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान की गई। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक और प्रतिनिधि टीम कार्टिस ने इस अवसर पर भारत सरकार और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, 2500 से अधिक वर्षों से सारनाथ दुनिया भर के बौद्धों के लिए तीर्थ और प्रेरणा का स्थल रहा है। यहीं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और करुणा, ज्ञान व शांति की उन शिक्षाओं को साझा किया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि सारनाथ के मंदिर, स्तूप और मठ सदियों से चली आ रही आस्था, समर्पण और मानवता की साझा विरासत के साक्षी हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में तेजी से होती लड़ाई और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर जारी टकराव से दुनिया भर में जहाजों की आवाजाही भी खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव लाल सागर में वाणिज्य जहाजों पर हुती हमले फिर शुरू होने और समुद्री आवाजाही पर बढ़ते खतरों से बेहद चिंतित हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने देशों, जहाज मालिकों और सभी संबंधित पक्षों से फंसे नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने नाविकों को दूतावास की सहायता, जरूरी सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश भेजने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: मध्य पूर्व में युद्ध और समुद्री तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लाल सागर और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में बढ़ते खतरे से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वाणिज्यिक जहाजों पर हूती हमले फिर शुरू होने पर गहरी चिंता जताई है। हूती विद्रोहियों ने अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंदब जल डमरू मध्य की नाकेबंदी की धमकी दी है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू ने कहा, जल डमरू मध्य में जारी जानलेवा हमलों से नाविकों की जान को गंभीर खतरा है। हाल के सप्ताहों में 2 भारतीय नाविक मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से नाविकों की मौत की दर्ज संख्या 17 हो गई है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 400 जहाजों पर कम से कम 6000 चालक दल सदस्य अब भी फंसे हैं। कुछ नाविकों को भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सहायता के बिना बेसहारा छोड़ दिए जाने की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने हमले रोकने और फंसे नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।
2: यूरोप में जंगल की आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पूरे यूरोप में जंगल की आग से जली हुई भूमि का क्षेत्रफल 57% बढ़ा है। 2025 में यूरोपीय क्षेत्र में जंगल की आग से 22 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है। 2022 में यह क्षेत्रफल 14 लाख हेक्टेयर था। स्पेन और पुर्तगाल में जंगल की आग की घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: स्पेन और फ्रांस में शुक्रवार को जंगल की भीषण आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैड्रिड के आसपास 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दी गई। दक्षिणी फ्रांस में भी लगभग 63,000 लोगों को निकाला गया है और करीब 80 घर नष्ट हो चुके हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आग की घटनाएं अधिक बार और अधिक भीषण हो रही हैं। आग का धुआं बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। WHO ने प्रभावित इलाकों में लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है।
2: बिजली चलित वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज बेहद जरूरी है। ये विकास और समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं, मगर कमजोर शासन व अवैध खनन के कारण यही संसाधन सशस्त्र गुटों, भ्रष्टाचार और हिंसक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। गत सप्ताह सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक में इन खतरों से निपटने के उपाय पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: बुधवार को सुरक्षा परिषद में एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों की बढ़ती मांग ने इन खनिजों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से होने वाली कमाई अक्सर शांति को पहुंच से दूर कर देती है। बैठक में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख हुआ, जहां विशाल खनिज संपदा होने के बावजूद बड़ी आबादी निर्धनता में जी रही है और अवैध खनन से सशस्त्र गुटों को धन मिलता रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शी शासन, जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं और खनिज संपदा के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे पर जोर दिया।
2: पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार 20 जुलाई को भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में तोरखम सीमा चौकी के पास स्थित वापसी पारगमन शिविर में 3 अफगान शरणार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: इस हफ्ते पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 23 मौतें नूरिस्तान प्रांत में हुई, जहां बाढ़ घरों, बाजारों और सड़कों तक को बहा ले गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय के अनुसार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पारून में सबसे अधिक तबाही हुई है। कम से कम 22 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 45 अन्य बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कों, पुलों, जलापूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रभावित समुदायों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ने कहा है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और लापता या घायल लोगों तक पहुंचना है। यूनिसेफ और साझेदार प्रभावित इलाकों में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जहां परिवारों को आश्रय, भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू सामान की तत्काल आवश्यकता है।
2: दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। नई प्रौद्योगिकियों और साझा वित्तीय नेटवर्कों ने दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध को पहले से कहीं अधिक व्यापक और जटिल बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह बदलता आपराधिक ढांचा अब क्षेत्र की सीमाओं से आगे फैलकर शासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: UNODC की नई रिपोर्ट के अनुसार पहले अलग अलग काम करने वाले स्थानीय आपराधिक गिरोह अब आपस में जुड़कर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक तंत्र चला रहे हैं। क्षेत्र में धन शोधन, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अवैध जुआ, बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण और मादक पदार्थों, हथियारों व मानव तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। UNODC ने कहा है कि जेनरेटिव AI, डीप फेक, क्रिप्टो करेंसी और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी तकनीकों से अपराधियों के लिए कानून प्रवर्तन से बचना और भी आसान हो गया है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित लोकधर्मी विश्वासियों, परिवार और जीवन संबंधी परम धर्म पीठी परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल केविन फेरिल ने 2027 में मनाए जाने वाले आगामी विश्व युवा दिवस के विषय में एक वक्तव्य जारी किया। कार्डिनल महोदय ने कहा, सियोल में विश्व युवा दिवस 2027 के शुरू होने में अभी एक साल बाकी है, किंतु जो युवा अपने पुरोहितों के साथ कोरिया जा रहे हैं वे सम्मेलन की तैयारियों में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व युवा दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए रचा गया लाक्षणिक गीत, आधिकारिक प्रार्थना और चुने गए 5 संरक्षक संतों के साक्ष्य ऐसे प्रेरितिक अस्त्र और साधन हैं जो युवा प्रतिनिधियों को 2027 के सम्मेलन के लिए स्वतः को आध्यात्मिक रूप से तैयार होने में सहायता प्रदान करेंगे। कार्डिनल ने रेखांकित किया कि अपने 40 वर्षीय इतिहास में विश्व युवा दिवस युवाओं और स्थानीय कलीसियाओं के विश्वास, उत्साह और सक्रिय भागीदारी के कारण लगातार समृद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं धर्माध्यक्षों और संपूर्ण विश्व में युवाओं की प्रेरिताई हेतु जिम्मेदार लोगों को अपना आमंत्रण दोहराता हूं कि वे सियोल 2027 की ओर युवाओं के साथ चलें, उनकी तैयारी में उक्त संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें और उन्हें इस तीर्थ यात्रा को विश्वास, कलीसिया के साथ सहभागिता और येसु से वैयक्तिक मुलाकात के यथार्थ अनुभव के तौर पर महसूस करने में मदद प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने बेघर लोगों की समस्या को दूर करने के महत्व पर जोर दिया है, ताकि ऐसे धारणीय और टिकाऊ शहर बनाए जा सकें जो मानव सम्मान और जन कल्याण को बढ़ावा दें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने 28 जुलाई 2026 को जारी एक संदेश में कहा कि सतत विकास की ओर बढ़ते शहरों के निर्माण हेतु बेघर लोगों की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करे और आम भलाई में योगदान प्रदान कर सके। बयान में कहा गया, बेघर लोगों का बने रहना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा को परेशान करना चाहिए। संदेश में कहा गया, हर किसी को एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जिसे वह घर कह सके, जहां वह रिश्ता बना सके, परिवार को संभाल सके और समाज में पूरी तरह से हिस्सा ले सके। अस्तु, घर को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु या वित्तीय परिसंपत्ति के तौर पर नहीं, बल्कि समाज की नींव के पत्थर के तौर पर देखा जाना चाहिए जो सबकी भलाई के लिए काम करे। परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन का संदेश न्यूयॉर्क में जारी नवीन शहरी कार्यसूची पर संयुक्त राष्ट्र संघीय आम सभा 2026 की उच्च स्तरीय बैठक में प्रकाशित किया गया था। यह डॉक्यूमेंट एक धारणीय भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि को दर्शाता है, जो सुचारू रूप से सुनियोजित और अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए शहरीकरण पर केंद्रित है। परम धर्म पीठी मिशन के संदेश में कहा गया, जब शहरों को एकात्मता, सबको साथ लेकर चलने और जरूरतमंद लोगों की देखभाल की दृष्टि से निर्मित किया जाता है, तो वे सिर्फ रहने और काम करने की जगह से कहीं अधिक उपयोगी स्थल बन जाते हैं। वे मुलाकात, भाईचारे और आशा के स्थल बन जाते हैं। यह भी स्मरण दिलाया गया कि बेघर होने से बुनियादी मानवाधिकारों के उपयोग की क्षमता कमजोर होती है। फ्रांस, स्पेन और ग्रीस में भयानक जंगल की आग के विस्तार के बीच स्थानीय कलीसियाएं लोगों की व्यावहारिक मदद कर रही हैं और बेघर समुदायों को अपने घर और रोजी रोटी खोने के सदमे से उबरने में मदद कर रही हैं। दक्षिणी यूरोप में फैली जंगल की आग की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जंगल राख में बदल गए हैं और हजारों परिवारों को अपने घर और सामान खोने का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रतिनिधि फादर यान लेलाय कहते हैं कि घरों और प्रकृति को जलते हुए देखना इंसान की कमजोरी और पर्यावरण पर निर्भरता की साफ याद दिलाता है। संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, प्राकृतिक परिदृश्य के बिगड़ने से परित्याग और एकाकीपन का एहसास हो सकता है। पीड़ित न सिर्फ अपना सामान खो देते हैं, बल्कि सामान के साथ साथ अपनी यादें, काम करने के औजार और अपने आसपास के इलाके से जुड़े अपने निज इतिहास को भी खो देते हैं। स्पेन में गेताफे धर्म प्रांत के प्रवक्ता अल्वारो दे हुआना कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया है, जबकि अन्य लोग
उम्मीद को पकड़कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैड्रिड के दक्षिण पश्चिम से निकाले गए लोगों में से कई आप्रवासी परिवार हैं जिन्हें नहीं पता कि वे कब घर लौटेंगे या उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। दोनों देशों में कलीसियाई संस्थाएं भोजन, शरण स्थल और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत ने अधिकारियों को उन छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है जिन्होंने परीक्षा पत्रों के लीक हो जाने तथा अन्य गड़बड़ियों के चलते विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई के आदेश में राज्य सरकारों को 18 साल से कम उम्र के उन सभी छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का भी निर्देश दिया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। भारतीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक्स ने कहा, हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्र प्रदर्शनकारियों को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जो शांतिपूर्ण विरोध के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम के कोऑर्डिनेटर आरिफ खान ने कहा कि कोर्ट का आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी छात्र प्रदर्शनकारी को सरकारी एजेंसियों से और परेशानी का सामना न करना पड़े जो प्रायः अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की पहल पर शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों को देश भर के छात्रों से भारी समर्थन मिला जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। कॉकरोच जनता पार्टी ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसी को निशाना न बनाने का अपना वादा पूरा नहीं करती तो वे फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। यह घोषणा कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान की गई। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक और प्रतिनिधि टीम कार्टिस ने इस अवसर पर भारत सरकार और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने

0: दुनिया भर में जहाजों की आवाजाही भी खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव लाल सागर में वाणिज्य जहाजों पर हूती हमले फिर शुरू होने और समुद्री आवाजाही पर बढ़ते खतरों से बेहद चिंतित हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने देशों, जहाज मालिकों और सभी संबंधित पक्षों से फंसे नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने नाविकों को दूतावास की सहायता, जरूरी सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश भेजने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: मध्य पूर्व में युद्ध और समुद्री तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लाल सागर और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते खतरे से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वाणिज्यिक जहाजों पर हूती हमले फिर शुरू होने पर गहरी चिंता जताई है। हूती विद्रोहियों ने अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंदब जल डमरू मध्य की नाकेबंदी की धमकी दी है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू ने कहा, जल डमरू मध्य में जारी जानलेवा हमलों से नाविकों की जान को गंभीर खतरा है। हाल के सप्ताहों में 2 भारतीय नाविक मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से नाविकों की मौत की दर्ज संख्या 17 हो गई है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 400 जहाजों पर कम से कम 6,000 चालक दल सदस्य अब भी फंसे हैं। कुछ नाविकों को भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सहायता के बिना बेसहारा छोड़ दिए जाने की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने हमले रोकने और फंसे नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।
0: यूरोप में जंगल की आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पूरे यूरोप में जंगल की आग से जली हुई भूमि का क्षेत्रफल 57% बढ़ा है। 2025 में यूरोपीय क्षेत्र में जंगल की आग से 22 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है। 2022 में यह क्षेत्रफल 14 लाख हेक्टेयर था। स्पेन और पुर्तगाल में जंगल की आग की घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुनी से अधिक हो गई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: स्पेन और फ्रांस में शुक्रवार को जंगल की भीषण आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैड्रिड के आसपास 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दी गई। दक्षिणी फ्रांस में भी लगभग 63,000 लोगों को निकाला गया है और करीब 80 घर नष्ट हो चुके हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आग की घटनाएं अधिक बार और अधिक भीषण हो रही हैं। आग का धुआं बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। WHO ने प्रभावित इलाकों में लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है।
0: बिजली चलित वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज बेहद जरूरी है। ये विकास और समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं, मगर कमजोर शासन व अवैध खनन के कारण यही संसाधन सशस्त्र गुटों, भ्रष्टाचार और हिंसक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। गत सप्ताह सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक में इन खतरों से निपटने के उपाय पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: बुधवार को सुरक्षा परिषद में एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों की बढ़ती मांग ने इन खनिजों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से होने वाली कमाई अक्सर शांति को पहुंच से दूर कर देती है। बैठक में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख हुआ, जहां विशाल खनिज संपदा होने के बावजूद बड़ी आबादी निर्धनता में जी रही है और अवैध खनन से सशस्त्र गुटों को धन मिलता रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शी शासन, जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं और खनिज संपदा के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे पर जोर दिया।
0: पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार 20 जुलाई को भारी बारिश के बाद आई

0: आड़ में तोरखम सीमा चौकी के पास स्थित वापसी पार गमन शिविर में 3 अफगान शरणार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: इस हफ्ते पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 23 मौतें नूरिस्तान प्रांत में हुई, जहां बाढ़ घरों, बाजारों और सड़कों तक को बहा ले गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय के अनुसार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पारून में सबसे अधिक तबाही हुई है। कम से कम 22 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 45 अन्य बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कों, पुलों, जलापूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रभावित समुदायों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ने कहा है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और लापता या घायल लोगों तक पहुंचना है। यूनिसेफ और साझेदार प्रभावित इलाकों में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जहां परिवारों को आश्रय, भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू सामान की तत्काल आवश्यकता है।
0: दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। नई प्रौद्योगिकियों और साझा वित्तीय नेटवर्कों ने दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध को पहले से कहीं अधिक व्यापक और जटिल बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह बदलता आपराधिक ढांचा अब क्षेत्र की सीमाओं से आगे फैलकर शासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: यूएनओडीसी की नई रिपोर्ट के अनुसार पहले अलग अलग काम करने वाले स्थानीय आपराधिक गिरोह अब आपस में जुड़कर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक तंत्र चला रहे हैं। क्षेत्र में धन शोधन, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अवैध जुआ, बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण और मादक पदार्थों, हथियारों व मानव तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। यूएनओडीसी ने कहा है कि जेनरेटिव एआई, डीप फेक, क्रिप्टोकरेंसी और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी तकनीकों से अपराधियों के लिए कानून प्रवर्तन से बचना और भी आसान हो गया है।
0: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित लोकधर्मी विश्वासियों, परिवार और जीवन संबंधी परम धर्म पीठी परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल केविन फेरिल ने 2027 में मनाए जाने वाले आगामी विश्व युवा दिवस के विषय में एक वक्तव्य जारी किया। कार्डिनल महोदय ने कहा, सियोल में विश्व युवा दिवस 2027 के शुरू होने में अभी एक साल बाकी है, किंतु जो युवा अपने पुरोहितों के साथ कोरिया जा रहे हैं वे सम्मेलन की तैयारियों में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व युवा दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए रचा गया लाक्षणिक गीत, आधिकारिक प्रार्थना और चुने गए 5 संरक्षक संतों के साक्ष्य ऐसे प्रेरितिक अस्त्र और साधन हैं जो युवा प्रतिनिधियों को 2027 के सम्मेलन के लिए स्वतः को आध्यात्मिक रूप से तैयार होने में सहायता प्रदान करेंगे। कार्डिनल ने रेखांकित किया कि अपने 40 वर्षीय इतिहास में विश्व युवा दिवस युवाओं और स्थानीय कलीसियाओं के विश्वास, उत्साह और सक्रिय भागीदारी के कारण लगातार समृद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं धर्माध्यक्षों और संपूर्ण विश्व में युवाओं की प्रेरिताई हेतु जिम्मेदार लोगों को अपना आमंत्रण दोहराता हूं कि वे सियोल 2027 की ओर युवाओं के साथ चलें, उनकी तैयारी में उक्त संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें और उन्हें इस तीर्थ यात्रा को विश्वास, कलीसिया के साथ सहभागिता और येसु से वैयक्तिक मुलाकात के यथार्थ अनुभव के तौर पर महसूस करने में मदद प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने बेघर लोगों की समस्या को दूर करने के महत्व पर जोर दिया है, ताकि ऐसे धारणीय और टिकाऊ शहर बनाए जा सकें जो मानव सम्मान और जन कल्याण को बढ़ावा दें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने 28 जुलाई 2026 को जारी एक संदेश में कहा कि सतत विकास की ओर बढ़ते शहरों के निर्माण हेतु बेघर लोगों की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करे और आम भलाई में योगदान प्रदान कर सके। बयान में कहा गया, बेघर लोगों का बने रहना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा को परेशान करना चाहिए। संदेश में कहा गया, हर किसी को एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जिसे वह घर कह सके, जहां वह रिश्ता बना सके, परिवार को संभाल सके और समाज में पूरी तरह से हिस्सा ले सके। अस्तु घर को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु या वित्तीय परिसंपत्ति के तौर पर नहीं, बल्कि समाज की नींव के पत्थर के तौर पर देखा जाना चाहिए जो सबकी भलाई के लिए काम करे। परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन का संदेश न्यूयॉर्क में जारी नवीन शहरी कार्य सूची पर संयुक्त राष्ट्र संघीय आम सभा 2026 की उच्च स्तरीय बैठक में प्रकाशित किया गया था। यह डॉक्यूमेंट एक धारणीय भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि को दर्शाता है, जो सुचारू रूप से सुनियोजित और अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए शहरीकरण पर केंद्रित है। परम धर्म पीठी मिशन के संदेश में कहा गया, जब शहरों को एकात्मता, सबको साथ लेकर चलने और जरूरतमंद लोगों की देखभाल की दृष्टि से निर्मित किया जाता है, तो वे सिर्फ रहने और काम करने की जगह से कहीं अधिक उपयोगी स्थल बन जाते हैं। वे मुलाकात, भाईचारे और आशा के स्थल बन जाते हैं। यह भी स्मरण दिलाया गया कि बेघर होने से बुनियादी मानवाधिकारों के उपयोग की क्षमता कमजोर होती है। फ्रांस, स्पेन और ग्रीस में भयानक जंगल की आग के विस्तार के बीच स्थानीय कलीसियाएं लोगों की व्यावहारिक मदद कर रही हैं और बेघर समुदायों को अपने घर और रोजी रोटी खोने के सदमे से उबरने में मदद कर रही हैं। दक्षिणी यूरोप में फैली जंगल की आग की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जंगल राख में बदल गए हैं और हजारों परिवारों को अपने घर और सामान खोने का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रतिनिधि फादर यान ले लाए कहते हैं कि घरों और प्रकृति को जलते हुए देखना इंसान की कमजोरी और पर्यावरण पर निर्भरता की साफ याद दिलाता है। संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, प्राकृतिक परिदृश्य के बिगड़ने से परित्याग और एकाकीपन का एहसास हो सकता है। पीड़ित न सिर्फ अपना सामान खो देते हैं, बल्कि सामान के साथ साथ अपनी यादें, काम करने के औजार और अपने आसपास के इलाके से जुड़े अपने निज इतिहास को भी खो देते हैं। स्पेन में गेताफे धर्म प्रांत के प्रवक्ता अल्वारो दे हुआना कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया है, जबकि अन्य लोग
उम्मीद को पकड़कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैड्रिड के दक्षिण पश्चिम से निकाले गए लोगों में से कई आप्रवासी परिवार हैं जिन्हें नहीं पता कि वे कब घर लौटेंगे या उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। दोनों देशों में कलीसियाई संस्थाएं भोजन, शरण स्थल और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत ने अधिकारियों को उन छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है जिन्होंने परीक्षा पत्रों के लीक हो जाने तथा अन्य गड़बड़ियों के चलते विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई के आदेश में राज्य सरकारों को 18 साल से कम उम्र के उन सभी छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का भी निर्देश दिया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। भारतीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक्स ने कहा, हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्र प्रदर्शनकारियों को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जो शांतिपूर्ण विरोध के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम के कोऑर्डिनेटर आरिफ खान ने कहा कि कोर्ट का आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी छात्र प्रदर्शनकारी को सरकारी एजेंसियों से और परेशानी का सामना न करना पड़े जो प्रायः अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की पहल पर शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों को देश भर के छात्रों से भारी समर्थन मिला जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। कॉकरोच जनता पार्टी ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसी को निशाना न बनाने का अपना वादा पूरा नहीं करती तो वे फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।